0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: ये NHK World Japan की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात आप शॉर्ट वेव्स, सैटेलाइट और इंटरनेट पर सुन सकते हैं। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu। उर्दू नशरियात का आगाज हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे की तवानाई तनसीबात पर हमले रोकने पर इत्तेफाक किया है। ट्रंप ने इतवार को सोशल मीडिया पर लिखा, फौरी तौर पर मुअसर रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में दोनों फरीकों ने तवानाई की जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है, इसकी खिलाफवर्जी ना की जाए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी मीडिया को बताया कि यह ऐलान उनके लिए खबर है। इतवार को एक वीडियो पैगाम में ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन रूसी तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले करने से बाज रहने के लिए तैयार है और हम रूस की तरफ से इसी चीज के लिए तैयार होने पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि तवानाई की जंगबंदी हकीकत बन जाए। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से यूक्रेनी फजा मुसलसल रूसी ड्रोन्स की जद में रही है और ये कि खारकीफ में तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ है। ट्रंप यूक्रेन से रूस में ऑयल रिफाइनरियों पर हमले रोकने के लिए कह रहे हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के हमलों से डीजल की शदीद किल्लत हो जाएगी। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी शुरू होने के एक साल बाद भी गजा में इसराइली हमले जारी हैं। फलस्तीनी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हफ्ते की शाम इसराइली ड्रोन हमले में एक शख्स हलाक और इतवार को इसराइली फायरिंग में एक हामिला खातून समेत 8 दीगर जख्मी हो गए। 2 साल की लड़ाई के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कयादत में एक अमन मंसूबे ने जंगबंदी का मुआहदा तश्कील दिया जो गुज़श्ता साल 10 अक्टूबर को नाफिस हुआ। तहम इसराइली फौज वक्फे वक्फे से हमले करती रहती है और ये दावा करती है कि हमास मुआहदे की खिलाफवर्जी करते हुए अपनी तंजीम दोबारा मुनज़म करने की कोशिश कर रही है। गजा के सेहत हुकाम ने इतवार को ऐलान किया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद हलाक हुए हैं, जिससे जंगबंदी शुरू होने के बाद से अब तक हलाक शुदगान की मजमुई तादाद 1488 हो गई है। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरीन में 450 से ज्यादा खवातीन और बच्चे थे। अक्वा मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस ने एक बयान में कहा कि जंगबंदी से कुछ राहत मिली है लेकिन अभी तक तहफ्फुज़ या मुनासिब इंसानी इमदाद नहीं मिली। उन्होंने तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो अमन मंसूबे पर पेशरफ्त करें। अमन मंसूबे के दूसरे मरहले में हमास को गैर मुसल्ला करने और गजा से इसराइली फौजियों के इनखला का मुतालबा किया गया है। हम इन इकदाम पर दोनों फरीकों का मौकफ मुतसाद है, जिसकी वजह से पेशरफ्त का अंदाजा लगाना मुश्किल है। नेपाल में अचानक आए एक और बड़े सैलाब से 5 अफराद लापता हो गए हैं। नेपाली फौज मुतासरा इलाकों में तलाश और बचाव की कार्रवाइयां कर रही है। फौज का कहना है कि इतवार के रोज वस्ती जिले गोरखा में मट्टी का तोदा गिरने के बाद मट्टी और रेत ने एक दरिया का बहाव रोक दिया। एसोसिएटेड प्रेस की फुटेज में देखा जा सकता है कि दरिया का कीचड़ आलूद पानी पहाड़ों से घिरी एक वादी का रुख कर रहा है, जिसकी वजह से करीबी रिहायशियों को बुलंद मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। नेपाली हुकाम दरिया के किनारे रहने वालों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का कह रहे हैं। मकामी ज़राए इब्लाग का कहना है कि तकरीबन 40 मकानात और कई पुल बह गए और पानी से बिजली बनाने वाली एक तनसीब को नुकसान पहुंचा है। फौज का कहना है कि उसके दस्तों ने अब तक 40 से ज्यादा अफराद को बचा लिया है।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। जापान के वजीर ममलिकत बराए दिफा का कहना है कि शुमाली कोरिया ने पीर की सुबह कम अज कम 2 बैलिस्टिक मेजाइल दागे। उन्होंने बताया कि शुमाली कोरिया ने अपने अंदरूनी इलाके से शुमाल मशरक और मशरक की तरफ मेजाइल दागे हैं। बावर किया जाता है कि वो मुल्क के मशरकी साहिल और बहरे जापान के करीबी पानियों में गिरे। सऊदी अरब में हुक्काम का कहना है कि सऊदी दारुलहुकूमत रियाज के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर 2 दिनों में होने वाले दूसरे हमले में एक शख्स हलाक और 11 जख्मी हो गए हैं। यमन में हूसी बागियों का कहना है कि इस हमले के पीछे उनका हाथ है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।